0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पे क्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबे वायर बिल नो देखी गेंग लारी वीनू ये नेंगी गेंग उले कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माँ फाही।
3: टेक के दुनिया अलगड़ में दातुरो कुक गेंग उले रो टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा बड़े ते कॉम्फोर्ट तक उंगेड़ नमों दा बदल तक बला नोला दो कुल्लो मकी खुरम माने वरुगे खामें नू मी हफ्ता एंग हास टेक के एमए फाव गे खबर तंग अडो हाल तिया एहुन तेरिन तैयार तो कुरियन ओती टेक के खबर ता
4: खबर

0: हाँ तावी का तो दुआ ही के मैं दुआ दी कुरी दुआ वाला स्लास्ट की ने बहादा नहीं यहाँ दूर हुए मेरे दादी माँ बोला बाँडू है वाह है मस्से पहिए मीसा मुंगे तंगे पर फेने ये तंगे मैं सिद्ध के हीला में बस नहीं ये तंगे ये चंगुले ना मीसा बुंगे साहन न फेनो नीस एक मगु ये तंग बाला बंदा में आहन ना भी इम्मे बाल का उदय बाहर मिटानी मिहिं गरी ये तंतन दाती आहन्न वरं हलुई को मुदुफं विस्तास्वेट्य मितां के दस्सालं मित्ते हाल वर्पने विच्चे एहा बारं मुदुहु नीमा
1: बे बे
0: एकुवेरी पकरिया एकुवेरी पकरिया
1: किकिने गी कुरया मे
0: अहरे मिथन मिया यहाँ नायकु गोले दूर ता मिथन अंगन्ना पुणे फोटी मा अहन मिया आधे उन्हें तंकुले लाहूं दूर ता दिया ता निंगे ता
1: निंगे मिया तो मिथन का दूर ता किंता आधे रेसुरे हरे मियोती मिथा का ते दिन निपुणी
0: एक कमकु ये पुण्य फतिह मितना गन्ने चे
1: एक कमकु हल्ला कम मितना कुंडू जन्नु फने आरंग ये लीरु इरु क्या लिकम में सीसा बगन्नु फोरा एक गोटा का बस जाएंगे मैं हम गए बस पीने का एक बस तोने में तक पति ना आते ये आए मैं
0: देंगे कब को दूरी तो हो दानी कौन था कुंबा
1: रस्ता हर करनु दाने ता मैं
0: ऐसा हर दान है ने ये नुए ऐ देखूं फरातु गोले दूर तक उगे सहरन्नो
1: दिन गले ये तो बड़ा अंदामीन
0: दामी करने

0: अरे रीत वरंग ही क्या मिलावे कफा आने का इसमें बदल कर ली उम्मदत्तया
1: सहादत्तया हम ते होरिहा को दिन के वस बैवरे वम्मा होरिहा को दिन के बार लोमा एक को दत्त में मसे क्या कोरणे मे हफ्ता बंदो के निमों द मे हार में तो होनेर दो से हफ्ता बंदो के निमों तंकोले कुलगत गतेगा फाहगा कोरवे तो द मसे कते पोने मे हंदाम वे उम्मो मसे के तेरिंगे दोस मे फाहगा कोरणे हम राज्य कन्या नो मुले दुनिया का वर कुलगत को फाह कोरवे दो हम हम एक दायरा तक को का एक मे हों एब मसे के कोरे दो हम सिही दायरा व्यफारी के दायरा हम एगोत गोस मसे कते नेंगे वस दायरा नेते अपन वके दोग करनो आने हेनो
0: मे बगीचाइन मी उमदत में न दिमावा खुदिन न कीवेस बोडो हेगेन कोमेस कहला मसे कते कुरान खुदिन कम दत्त में उम्मीद कुरने
1: एह महामा तीगे तरह कोमे कुछ कोस बोडो हेगेन कोमेस दायरा हियार कुरान वर मुहिम कम कोमे दायरा हियार कुरी नमस कुरा मसे कते वर फरवातर कम को वर गया वेगेन कुरा ए कुछ को वर लोबिंग कुरा कम गतुक कुरेम कोमे कम सिराद कुरे वर रंगला कुरेवेन होरिहा को दिन वस हंदां को रमवान एवस मसेकते की देरा मसेकते नोंदा ए अहमी हकन एही तेरे वेदे गोता कुरा कमे वस नोनी ओफी होगा मेजका गोंडे कारी का इंदिगें कोरा मसेकते कम वस कोमे मसेकते की सेगे सब अहम बायका वारा मुहिम फायदा तक वाण मसेकते ए मा होरिहा को दिन वस हंदां को रमवान बाकी मसेकते कुरा बाय कि मुझतमो गदा बाय के गतु ग देखे गन नो आने को मे मे हके वे समा ए फुरी हम एहतरामा गदरा लोबे देम वाने बाइंगे ए मोमेद कुरा मी मसेके तेरेंगे दोस फाह करे गन दारु ते को दे मे कं हंदाणु ग बाहटाने कम
0: को बा मि हार दें कुज्जका वाहक दक्कालम वी कन्नेगे
1: माहक दक्कालम वी मि हारो एबो ते कुज्जका गोलेफा इगा वाहक दक्कालम अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: इबाना
2: लबा
1: কেন হালো
2: আলহামদুলিল্লাহ রাঙ্গালো
1: কি কল্লানি মিয়াদু
2: ফ্যানোলানি
1: ফ্যানোলানি
2: মুরাগা ফাই
1: মুরাঙ্গা ফা ফাত্তাল লামি ওলানি
2: লাব্বা
1: ওকে এবানো বড় এগেন কোনকালা মাসেকতে কোরামে কাওয়াম বেণু কোন ওয়াজিফা আদা কোরাম বেণু মানে বড় এগে
2: নারু
1: নারু হকাবা কি বে নারু হকাবা আমি হিয়ার করি মিহুন্না এহি তেরবাম বেনোয়াতি মিহুন্না এহি তেরবাম বেনোয়াতি হ্যাঁ নারহন্না কি হাম ওয়ারা গিনা মিহুন্না কমমে দহ কো সহি তেরবাম জহে পাইতো ওয়ারা বোরাবেস মাসেকতে এমা ওয়ারা হিবরা কো মিকান কোরআন কাম দত মে উম্মিদ করেনগে
2: লব্বা
1: হিঙ্গা মাসেকতে দামা
2: লব্বা
1: গুরু আতত ফুরতম দানি
2: লব্বা
1: হিঙ্গা কোরে নাগম হাইন আলিফা হাইং আলিফং হাম আদাগমতিং আং আকুর এবাই মিয়াদোস কোং আকুর নাগানি
2: কাফ
1: কাফ কাফ গমিয়তি কোচতো হিঙ্গা দ বালালো কমসিকতে হি হিওয়ানি কমসিকতে মে বেণুমি বেণুম এচ্ছে ওকে ইবানা তৈয়ার কমমসিকতে কেসে হাম মিহার মি ইবাল দেনি ইবানা গে মাসেকে
3: মালুম মালা
1: মালুম মালা मालूम माला में मसे करे कि दत्ते कबूल करेगा तो का एम में फंसे हम मसे के ओमो की क्या बोलने
0: वारा फंसे हम मसे के तो इबान नेंगे तो में मसे के कुरिया दागोए
2: नेंगे
0: आती नेंगे गा बालालं मी मसे का तो का मी वाग तो कि दत्ते में देना लफ्से तीने मैं लफ्से जुमले घड़ाल में जहनीगे
1: दम मी लफ्से के कोबेतो बालं मी हदन जहेगो तो कि दत्ते में एक मी बगीचा में गंगोले मां बोंडे तो ए माबोंडे मलेन नगन जेने हे मालूम मला मि कियाडेंगे ए माबोंडे मलेन ने गेमा ए मालो कोन न लफसो मिले बेनी
2: लब्बा
1: ए मम्मी आ तो के माबोंडे ई गहोरे माता क्याल देनेंगे
2: लब्बा
1: हुवंदो मा माले करुवा मा इरोदे मा फिनिफेम्मा
2: फिनिफेम्मा
1: फिनिफेम्मा फिनिफेम मालो कोते कोन लफसे तम्मो
0: फिनिफेम मालो गमियाती बुला para fase lafse domi bula mi lafsu beenun ko gen jumle ngada den vitatmen dibana
1: bula beenun ko gen jumle bula lekke wah kahimanam ve jumle ka kihene faani
0: ಬುಳಲಕ್ಕಿ ವರ ಮಿಹುಣ ಉದುಕುರಾ ಜನವಾರ
1: ಇಬಾಣ ಮಿಕಹಲ ಬುಣಾಣ ಹಾದಿಸ ದಿಮಾವೀತ ಉಬಾಣೆ ವರ ಉದುಕುರ ಬುಳಲಕ್ಕ ದಿಮಾವಿತ ಏಕಂ ಅಣೆ ದತ್ತೆ ಫೆಣೆ ವರ ಗಿಣಂದೆ ದತ್ತ ಮೇನ್ ಮೇಂ ಮಾಲೆಗ ಒಳೆಯ ವರ ಗಿಣಂ ಫೆಣೆ ಗೇತರೇಗ ವೆಸ್ ವರ ಗಿಣ ಮಿಹುಂ ಬುಳಾ ಗೆಂಗುಳೇತ ಏಕೆ ನಮ್ಮೆ ವಾಣಿ ಗೇತರೆ ಬುಳಾ ಗೆಂಗುಳವೆಂಟ್ ಎಹಾ ಉಂದಗೂ ಬೊಡಿಯ ಬುಳಾದಕ್ಕೆ ಬಿರುಗಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೇನೆ ಹದ ನಿಯಾಮಕೋ ಬುಳದಕ್ಕೆ ಹಾ ಉಂದಗೂ ಬೊಡಿಯ ಎಹೆ ಮೆ ಮಾಸುಮೆ ವಾಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಬುಳಾದಕ್ಕೆ ಬಿರುಗಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೇನೆ ಹದ ನಿಯಾಮಕೋ ಬುಳದಕ್ಕೆ ಹಮ ರರ್ರಶು ಗಯಸ್ ಮಾಲೆ ಗಯಸ್ ವರ ಗಿಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆ ಮಾಮಕೋ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಗಕಂ ಎಳೆಯಸ್ ಫೆಣ್ಣಾಣೆ ಬುಳ ಫಸ್ಸಾಲಾಣಿ ಬಿರುಗಣ್ಣ ಏಕಂ ಫಸ್ಸಾಲಂ ಕೆರೆದ ತಂಕೊಳೆ ತಫಾತ್ ಗೊತಕಂ ಇದೆಯಾ ಹೆಣ್ಣು
0: ಇವಣ ಅದಿಯಬೋತೇನೆ ಎಂ ಮಸಕ್ಕೆ ವಾಹಕೆಯೋ ವಾಹಕೆಯೋ ಅದಿಯಬೆದ್ದೋ ಈಗ ಹೆಮ್ಮ ಎಮಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆನ ಕುರಿಯದ್ದ ದತ್ತ ಕ್ಯಾದೇನೆ ಮಿಯದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ಫೇಶುಂ ಕ್ಯಾದೇನೀಮ ವಾಹಕ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಎ ಜುಮ್ಲ ಇಬಾಣ ದತ್ತ ಮೆಣ್ಣ ಕ್ಯಾದಮಿಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಿಯದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗ ವಾಗೋದಕ್ಕಿ ಲೂಸಿಯ ನಿದಾಹೆಲೆಗೆಂ ಎಂದು ಫುಮ್ಮ್ಯಾಗೆ ತೆದು ಕುಡದೊರು ಬೇರು ಬಲಾಲಿ ಇರುಗೆ ದೋದಿತ ಲೂಸಿಯನ್ಗೆ ಮೂನ ವಣಿ ಎಳಿಫ ಕುದಿ ದೂಣಿತ ಲವಕಿಯ ಮುಂದೆ ಲೂಸಿಯನ್ ಡೆಂಗುಗುಳ ಮೂಣುದೊವೆ ಲೂಸಿಯನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ ನೂಕುಲಾಗೆ ಹೆದುಲಿ ದೆಂಕಿನ ವಾಣಿ
1: ಲೂಸಿಯನ್ಗೆ ದುವಹೆಗೆ ಫೆಶಂ ಮಿಯತಿ ಮಿ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ಫೆಶಮ
2: ಲೂಸಿ ದಿಯೈ ಅನೆ ಬೇರ ಹಿಂಗಾಲ
1: ಲೂಸಿಯನ್ ಬೇರಂ ಹಿಂಗಾಲಂ ದಿಯೈದ
2: ಲಬ್ಬ
1: ಎಮ್ಮೆ ಮದೆಂತಿ ಬೇಕು ದೆಣ್ಣ ಮಿಯತಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ದೆಂಗುವೆಬ್ಬ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಮದ ಹೆಕ್ಕಿಯಾದೆ ಬೇಣು ಹಿಂಗ ಕಡಿಯಂಗ್ ಅಡೋ ಹಾಲಂದ

0: Mamma, badu haveja.
1: Tarifla, Sonia kata buni. Mamma ibece mige muluwa.
0: Papa, gadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: तुम्ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस वजह से
5: मामा फोन एक का हाँ मादमारे तैयार दावी था ना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको Don't take a mega decal and no levene. This only Agata.
7: Ehini Gulunta Badahikura Fadan, Emegatugava Guluntaka, Emefuratamis Kandema.
8: Phony Karuna,
9: Anikas, Bappa Hutali, Falke Libe Haskandi, Iturbamune.
8: Mamma Vahaka.
9: Then the way Hindu Mabandung, Tolemung, Edair, Hibe
8: Zaham
10: Yahago, Dunu Kongulekanuma,
9: Roifava, Adakun, Saudi Abunye.
8: If the Asaruga the Riti Vahata, Divirajigaduke YouTube channel, Miharu Adoswa the Fere. Divirajigaduke YouTube channel, subscribe Kulava.